वह अर्जुन समाधान योग उच्यते विचार राग वहाय खुदा आत्मनि वात्मना तुष्टः योगः कामसु कौशलः योगस्तः।